0: चल गए रहा
1: क्या पड़े
0: चल गए चल गए चल गए
2: beda masa satu rasa sukun spesial baru.